मत, नहीं येंगे मत, नहीं आगे वो नमः सिंबलेंग इम्मितिल आलं तुलो लिंदिया आ रहे रंग इलाइंगे कुइं जारुंगा कुइं आला दुइं और रंग वा की दुआ वाले देंग करने तो वा जलुंबा ऐने लंबा जन दीम दीम पोका न दीम पत्ता न दीम किरो न किम पेतन्या जन्ने परंगो इन नमः सिंबलेंग दो असी की देंग करने तो वा जलुंबा यसे की गलंगा जने बपा की गल में दीन दियो कहीं न कहें न में देन दियो कहीं इलायंगे ऐसे लोग मिते ले ला वारें इनका उर कनी ला आ दक्षिण पुत्र और ओलिम पारे जिके मुखिन सिंबला उस बेले न कहे तेज बैं मरंग अजुंडे बास इन दीन दियो लों दियो जिकास जाए इलावोंगे इन दो अल्ब के बरसिंग मध्ये डॉक्टरो किस्लम इन दो अल्ब के बरसिंग मध्ये डॉक्टरो किस्लम इन दो नमा बरसिंग ओके नमा किंग बाउ न्यत तें क्लासी की दियो जंग नमा सिक्या ने जे वाला बिताना संभाया न किंग क्लासी की जुआ मध्ये दिंग गुबुल न खेरा जाव वाला खेरा जाएंबा गुबुला से दियो जान न दूसरे यने यन न बा ने इला गुबुल गुबुल बेलंग गुबुल इना लंबाल दिन दो तो जी असे इन दूसरे जो और रंजे थे ना इला दो इला रियल जी जाने किंग की वो कलाल जी ऐसे जाने असे हुए ना बा गिजा ऐसे हुए ना बा मरंकी के लकी वो ये किंग दिन इलाल जी ऐसे जाने मम्मा ने किया रिदिक फिया ने एल ने जिसे किया जी हो ngay ilang ne toroy na toro ba toroy torik akilebal toro di wona zwinga torik akilebal toro arpui na na kwa kami baya am ditin duto ilang na dangwo toro si insilom aritulya layo ilang na kayo karabaji tv marang in toro ini bay long ni al duoy ila duoy ba neesa kwa kinga kamga al ki toro hagan marang in duo toro na al jijin nula yin yasi ki kiwa yani al kwele zendi la kiwa ti yasi kiwa ajane ba ki kiwa ajane ba ding ila sa jang alan toro si jani ding bar si jani ding anyang kwezi ding bang kwezi ding kalang kwezi ding alang kwezi ding orang kwezi Nous sommes des

हमरा सुख सूरो हाय एदेन अथादी तुम बतो तिसने कीरे याने उनु तक ओन ओम फ उदय मेर नहीं नात मेरी ती इतना तवाई उ तक नात गुदा गिरशा हुआ गुदा मल्लगा हुआ गुदा दिवा हुआ गुदा ना हुआ मर्रियो बेन ओदोर ओन ओदई हुआ इमिस्कीना हुआ एन द इनात बाबरी हुआ एन द इहमरा हुआ इकक सका हुआ इंबरे हाई विश्वीवे का तुम बतु दाइत कितते ऊन फ हरोग इम की इंदी आरोग इम इंदी तो न तिकते नियो बारूक ना थई दातमी आया उत्तू न अम्ब तू दाई ना तू ओ धई दाए तिवरिय तो ना हुआ तुमर्री ओ धई हई तिनी ने तो ना हुआ तुमर्री मिस्कीन हो शंबीवे तो ना हुआ तुमर्री इन इंद ओ धई इना तबाबर इन बरे शिवतित ना तिनी वे तू न अम्ब तू दाई तू ओ न ऊन फ मर्री हरित करे बाप ने फे मर्री एक लेत लेत बिटकाई बारूक उशी गी की तिंदी आया बरा हरोग इम एदना ना थे गी के किद्दी आया तो नंब तो गाल कफन हुआ ओल्हा दे कफन बाका वे नहीं गी के किद्दिया बे तो ना तीदा उन ऊधई ना तमर्री ओ उन ओधई है ते शुए तो ना हुआ इन मिस्कीन है शतनी तो ना हुआ ओ दे ना तबाबर इन है शतनी तो ना उन बतु बरो कर री ओ उन ऊधई कसान बे इबाब के ना बा कसान गी गने नेत इबाब के ना बा का उकना के हाय उन हाज देते है ना का इबाब के ना तू बे तो ना तीदा उन ऊधई तिते न बते शबिब ने तू न हईस बासं को और अरे वे ना तिबगा न इंदे हंसी को हरत दाते ना तुआई बिथाई किथाय दन्न नोतिये पाड़े बाड़ना विकतिये दिंदे तो ना तिब उन ऊतक उन इबनादम ऊकन शंबी बो दीम हरगुआ बो अको दीम ना ते मार विदिये भीसीत हसका काप का एकती नात मर्रिये का रवकात मिराई तवायती हदीदीनी हो यकीनी तू नंब तू बुने आदमी ते है ना तो अको बे तुना ती दाय हरत दाती उतकी तो दी महस का काप इकती उत्तुना ती दाय क्वासन बाडना विकतिये न गात की था अको बे तुना ती दा उन उधई तित्ते न उन उर्जिक एदनिब उर्जिक उदोक अडाट वाकाय वरावाय गल्लावीन उग दिया बाको उर्जिक उन वावे इतंगीफ दिया बाको बे तुना ती दाय उन अल्लाह उर्जिक इनी होग अको बे तुना ती दाय उम बरूक उन्ने थंसी के तोना हुआ उन्ने थसा का हो अदित्य तू न उम बतू दायित कित्ते अको बे तुना ती दउन उधई उन हस्त के गदन दीना ओ शुरू गदन दीन अरे वासं को और वे ना तिबगान इंदे ए बाल उयावा इंगी दीन हुआ तेबरी तिफोद अनु हुआ अल्लाह आमना ती ने तू न तू न दलील इंदे तुम बतो शंबीबेक उन क्वासन थाईते का न तिंदियेक तित्ते ब्रिशिबा बाल अनु ते बद्रुआ ए बालुआ थाय हो एनेत कस्तो उम्बतो शंबीबेक उकासन एहे तो न तेका नि आया तोराव तू अरे वे नातिब रे दार बे नवर शेव बे अरे बे व नगे मे न दो तुम लगताय नतवा दई नि सेने गिंद तोन तु तेम सिउने तू उम्बतो ओनेनिन रे तोन अरबे व उदमानो नो ना हाये हुआ वे नाति भाये हुआ उदमान अरे का अकाये हुआ नात का दाय का थी से हुआ बिथाते भाये गाल दोर बा अरे है गाल दोर अन आशुक गीगेन उत्तु नाति दा एशु की सूला में गीगेन कुलले अगार बा यम उयातम आप ओबेर कुलले वीदगी ने बरु हंसूरी दबा बुदिया आबू उत्तु नाति दाय उन ऊधई तित्ते न इंबते उगनो है ईतीत वेर दार वेर मीनान एहे तो न कंतीत उन उगनोक तिसकीरे तो ना हुआ उगनोक तिसनी से तो ना हुआ उगनोक दाईत का तिकोसिये तू न उम्बतो अर्री वोक उत्तु ना ती दाई उन उधई उगरोयो ब ईश्कान उथाय आतो दाए तु इकते नेत तु दाई ना ती दा दाएनेक हईस का तू उत्तु ना ती दाई क्वासन तु गुदराते आमना ती नेक वरम थंगनु कितरम आकुंका मदिदियान ए नंदिया अबू उम्बतो शंबीवे का ओन ओम हिन बिरे दामे तीत अबात एनोब उत्थंगनु इन ए उही हाए ए अंग ए कोनवा कितरम उम्बतु तो
तूकन शंबीबेक तूकन मगदीरा ते फे नाती दाय उत्था आती ते हे नाती उम्बा तू तूकन उकासन तिसोकी नोक हेनिन इंबरे ने यदो ओनु दाय तवरे हुआ तुलही ते हुआ उम्बा तो कस्तो शेविप्तित दाय बुकनो होई बा इद अननेयत हेनिन तुत्था दी तुम्बा तो दोदाह दी दनाय ओनु दाय कस्सान बेरावा कस्सान अमसे अमनावा उत्तुनाती दाय उनु धई उगनो नातिब का बैदा नमियाद एम बलीब ने अदोकन अरे उबासं को और गुदा थदी धदी दीनी अरे वे नातिब एशु के गूरह में गीगे कुलले या गारबा या मऊ या तमा बोबेर कुलले भी दगीने बिंदे उम्बा तो तिशाबिबने अन आशुक कस्सू उनु धई गादे खियोग गादे उधायुक हुआ आ रहा हुआ कस्सा खियोग गादे आशुक गीगेन गुजरात इब्रिंद इहिने इब्रिने नातिक इम्बरे हयाई सीन अको ओ नो मीन मीन का ओनो गरोयो नाथी सीन दई सिना आती वो वे नाती वो ईद इम्बरे कन एने ना थो इगम ना उत्तु नाती दाई ओन उधई ओनो कासना इत गुदरा हुआ कासना इत थाया हुआ एक अनी ने तो ना तू तुलही ते ती दा उधई दाई शगा शगा मेने तू ना अर्रीव तुबड़ावी उधयून एम बली बनेत दीमा दीमा बकनिया दे तुकना तू ना शबु त्वरे तुकना नेहरू दाएव दातीने तरेनी तुलही ते तिव दाएव दातीने तरेनी तौरे तिव दाएव दातीने तरेनी हल्लान दाएव दातीने तरेनी बेत तुना ती दाए इन्हें इन एम बरी इब्न मसीह दे ओकना था दी तुबे दोर तीम सोने तु तीम सोने दाएव मासू अब तिका तीने इन्हें इन वसं को औरित हबायाते भदीदना तौलित थो हदीदना ने नातिब इन्हें मिसकीना हुआ ओदा इनात बाबरी हुआ इनात इबरीन एरव उम्बरे इत अवीने तूना अरवातु ग्वत इंगदीने तूना अरवातु ओन उधई मेरने नाती क मल्लाब गीगे अन्नोब गीगे नोब ना तनु गीगा ए अदनाको हल्लान तवरे ने इत्यो ना दायने लही तु लही ते ती दा ना थ्वाई साबे का तीने तो ना तू ओ तु ना ती दा एने भदीदना तोराव तू ओन हस्की हदीदना ओन इबने आदम ओन हस्के उगने दाइब की के ओन उतक उगने हाबून इबरियेक उम्बा तू लहित वरो का अम्फता लहित वरो दाई रशद इबकिद्दी लहित वरो दाई था आतिबका दाय एन उत्तु नाती दा एन एन एन एम बली बने नोकना एने भदीदना बली ने भदीदना कस्तु तु ने हरवे धाय रशदाओ धाय दाय भदाई ने तुनाओ बे तु नाती दा एम बली दिया एक नाया उत्तु ना दी मशाल्ला था आतियों दाय दानई तो ना एने व स्थिर ओकना दी राजू समर तुष्बोना सलामी ने ओकना ए ने हुआ वरे ने हुआ शाल्ला दाई था आती निम्मर्रे।

मत नहीं येंगे, मत नहीं आगे वो नमाज़ बिलेंग इमितिल आलं तुलो लिंदे आ रहे रंग इलाइंग कोई जारों आ कोई आला दुई और रंग वा की दो वाले दें करने तो बाज़ लंबा इन लंबा से दीम दीम पकाने दीम पत्ता ने दीम किरो निकीम पेटने जन्ने परंगो इन नमाज़ बिलेंग दो ऐसे की दें करने तो बाज़ लंबा ये से किंग अलग जने बपा किंग अलग में दीन दियो कहीं न कहें न में दें दियो कहीं इलायंग ऐसे लोग मितेल ला वारेंग इनका उर कनी इला आ दक्षिण पुत्र और ओलिम पारे जिके मुख्य सिंबला उस बेले न कहे तेज बैंग मरंग अजुंडे बास इन दीन दियो लों दियो दिकास जाए इलावों इन दो अल्ब के बरसिंग मध्ये डॉक्टरो केसलम इन दो अल्ब के बरसिंग मध्ये डॉक्टरो केसलम इन दो नमः बरसिंग ओके नमः किंग बाउ न्यत तिन क्लासी की दियो जंग नमः सिखिया ना जे वाले बिताना संभाया वा न किंग क्लासी की जुआ मध्ये दिन गुबुल न खेरा जांग वा वाले खेरा जाएं बा गुबला से दियो जाना दूसरी यानी यानी ना बा ने इला गुबल गुबल बेलंग गुबल इन्हें लंबा दिन दो तो जी ऐसे इन दूसरी जो और यानी तें ना इला दो इला रियल जी जाने किंग की वो कला जी ऐसे जाने ऐसे हुए ना बा गिज़ा ऐसे हुए ना बा मरंग की किला की वो ये किंग दिन इला जी ऐसे जाने मम्मा ने किया रिदिक फिया ने एल ने जिसे किया जी हो ngaing ilang ina toroy na toro ba toroy torik akilaba al toro diwa na suwinga torik akilaba al toro aripuy na nakwa kami baya amditin duto ilang na dayungo toro si insilom aritulya layo ilang na kayong karabajitifi marang in toro ini balong ni aldui ila dua bene sa kwa kinga kamnga alkitoranga marang indu toron aljindula yesiki kiyani alkwela zendile kiyoti yesiki wajane ba kingi wajane ba ding ila sa jang alan toro si jani ding bar si jani ding anyang kwese ding bang kwese ding kalang kwese ding elang kwese ding orang kwese Nusine desi.